0: 热水冲烫，借此油甘活性被激发，静置时生成具有辛辣气味的异硫氰酸盐。它强烈作用于鼻腔，喜欢的会直接用芥末膏，口味清淡的也会用汤汁稀释。这口泼辣跳脱不仅赢得中国人的青睐，在印度甚至更受欢迎，那里是芥菜籽产量最高的国家。
1: हरा पत्ता का कचुंबर दो देना, उसके बाद चेटीनाडु चिकन टिक्का भी सर्व करना है, ठीक है? प्लेट मेरे को देना सामने जो तुम्हारा है, हाँ थोड़ा बनाओ बनाओ बनाओ कंटिन्यू बनाओ।
0: 印度饮食以五花八门的香料应用闻名，但有一种几乎只在这个国家使用。
2: Yeah, it's quite strong, actually.
3: Stronger. It is so fragrant.
0: 阿魏，一种草本植物根茎渗出的乳胶，带着腐坏大蒜般的气味，被戏称为恶魔的粪便。